0: Welcome back. Thanks for staying tuned to Beyond. I'm Samiksha Srivastava. Here's a look at the headlines you're tracking this hour.
1: श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है।
0: Union Home Minister Amit Shah slams Congress over its decision to sing only two stanzas of Vande Mataram, calls it anti-national and an example of appeasement politics, accusing Congress of insulting martyrs.

0: Ukraine says Russian ballistic missiles killed 13 people and injured more than 30 in Kiev, damaging buildings and severing power supply to some parts of the Ukrainian capital.
1: श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है।
0: यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह स्लैम्स कांग्रेस ओवर इट्स डिसीजन टू सिंग ओनली टू स्टैंजास ऑफ वंदे मातरम, कॉलिंग इट एंटी नेशनल एंड एन एग्जाम्पल ऑफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स एंड अक्यूजिंग कांग्रेस ऑफ इंसल्टिंग मार्टर्स।